0: पतिनकी चिकन तरियाकी, पतिनकी चिकन तरियाकी, पतिनकी चिकन तरियाकी, तू गत गेरो मकी
1: मी गत कावासकी,
0: गेरो ना कालेना के मारुना तो ला कुंता como Julio los 70.
2: Patinaki, chicken teriyaki.
0: Un billete, dos billetes, una tienda de billetes, la más dura que le mete.